बीआर फिल्म्स की रंगीन मायानाज तस्वीर वक्त इस दौर का सबसे बड़ा शाहकार हिंदुस्तान के कदीम फलसफे तकदीर के साथ साथ हुस्न इश्क की जीती जागती तस्वीर सनसनी खेज और दिल हिला देने वाले वाकयात का तूफान झरनों चश्मों और बर्फ से लदी हुई पहाड़ की सफेद चोटियों का हुस्न साले रमा का बेहतरीन तोहफा चोटी के 23 अजीम तरीन सितारे एक साथ पहली बार पर्दे फिल्म पर सुनील दत्त साधना राजकुमार शशि कपूर शर्मिला टैगोर शशि कला रहमान मनमोहन कृष्ण सुरेंद्र जीवन मदनपुरी मोतीलाल मुबारक अचला सचदेव लीला चितनिस सुमति गुप्ते एरिका लाल और बलराज सहानी।

0: राज कमीने,
1: जबान संभाल के बात कर। इन हालात के तहत कोई अदालत, कोई कानून, कोई सोसाइटी मेरे मुवक्किल को कातिल नहीं ठहरा सकती। योर ऑनर, कातिल सिर्फ दो आदमी हो सकते हैं, वो दो आदमी जिन्हें कत्ल करने का पूरा पूरा मौका मिला था।

0: खुशी हुई होगी आपको ये पढ़कर जो चले आए बधाई देने।
1: मैंने सोचा इस गम में शायद तुम्हें किसी साथी की जरूरत होगी, चला आया।
0: राजा के गम को किराए के रोने वालों की जरूरत नहीं पड़ती चुना से।